तू बोझे धरती माटी में समाओ पानी जे चंदन माटी में हराओ तू बोझे धरती माटी